ओम नमः शिवाय श्री सरस्वत्यै महालक्ष्म्यै महाकाल्यै च नमो नमः। श्रोतेव नमस्कार। हरि भक्ति परायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरिभक्ति परायण भानुदास महाराज देगलूरकर धुंडा महाराज मठ उत्पाद गल्ली पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरिभक्ति परायण श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांच्या अनुमतीनं आणि कृपाशीर्वादानं सालंकृत।

दया पाशी देह बुद्धि तयासी सुख नाही त्रिशुद्धि ते बुडाले द्वंद्व संधि आधि व्याधि महारणवी। जय देह बुद्धि पाशी सकल

नज्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होंठों पर। नज्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होंठों पर। लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह। कब से बैठा हुआ हूं मैं जानम, सादा कागज पे लिख के नाम तेरा। बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज़्म।

टुकड़ा एक नज्म का दिन भर मेरी सांसों में सरकता ही रहा। लब पे आया तो जबां कटने लगी, दांत से पकड़ा तो लब छिलने लगे। ना तो फेंका ही गया मुंह से, ना निगला ही गया, कांच का टुकड़ा अटक जाए हलक में जैसे। टुकड़ा वो नज्म का सांसों में सरकता ही रहा।

0: मनाचे अनोखे गहिरे रंग वृत्त छंद आणि गेयतेच्या माध्यमातून उलगडत जाणारा आमचा कार्यक्रम जरूर ऐका. माझी कविता नवकवींना हक्काचं व्यासपीठ माझी कविता जरूर ऐका दर सोमवारी दुपारी 3:03 आणि पुनःप्रसारण त्याच दिवशी रात्री 10 फक्त रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ चॅनल वर.
1: सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खुला देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं. आंखों से मानूस थे सारे चेहरे सारे सुने सुनाए पांव धोए हाथ धुलाए आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए. पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे. आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था. हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था. ख्वाब था शायद ख्वाब ही होगा. सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली. सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है.

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ हाँ बोला ना।
1: आपकी फरमाइश।
0: हो आपकी फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम, मी जनार्दन बराटे, धनरा नगर, जेल रोड, नाशिक रोडून बोलतो। फरमाइश करायची होती।
0: हो द्या ना।
1: राजा हिंदुस्थानी मधून आय हो मेरी जिंदगी में बहार।
0: ओके वा, मस्त गाणं।

0: अंगा लाया सुतलाय कर थर थराट
1: अरे कसला थर थराट हो डॉन आणि उडी उतारा डॉन
2: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं।

अरे टकले की खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे, लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना, लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्या समझे? नहीं समझे, चल फुट।

0: डम।
1: बंद कर तू जरा गण, जरा दाखो के हंगामा।
2: हंगामा, जय हंगामा। कहा गई मेरी धंगम्मा, टकले से घाबर गई क्या? आ दिखाता हूं तुझे हंगामा।

0: अग नायग घाम ही फुटला घाम ही फुटला अंगा लाया सुटलाय ग थर थराट घाम ही फुटला अंगा लाया सुटलाय ग थर थराट
1: आपकी फरमाइश।

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के मुदन तीर भी टकर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जावो ना ब...

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

शिशिशिये की पे करता ऐसा काय को होता, शिशिशिये की पे करता ऐसा काय को होता, एक लेजेंड माइकल को रात को सेट नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर मैं कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है, हे अब जज़ाइबा ला ला ला ला ला, हे अब जज़ाइबा।

शहर में है चोर बड़े, जंगल में है मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े, अपने भी वसाद यहाँ पड़े हुए हैं और बड़े। माइकल तो बस लोगों की खाली जेब कतरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा कर।

कितना पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए, लोग दीवाना है जो यूं इस पैसे पे मरता है। फिर मैं कहना माइकल दारू पी के दंगा।

0: ना जालों से बहुमत वालों से कपट ना जालों से। अभी तो कितनी दूर है दिल्ली हम दिल वालों से,
1: अभी तो कितनी दूर है दिल्ली।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो, आपकी
0: हाँ बोला ना।
1: फरमाइश।
0: हो आपकी फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम, मी जनार्दन बराटे, धनराज नगर, जेल रोड, नाशिक रोडून बोलतो।
0: हो बोला।
1: फरमाइश करायची होती।
0: हो द्या ना।
1: राजा हिंदुस्थानी मधून आये हो मेरी जिंदगी में बहार।
0: ओके वा मस्त गाणं।

रात को जी है रात को जी चमके चंदा तेरे बिन पाए नहीं चैन ये बंदा जी मैं।

0: अंगा लाया सुतलाय कर थर थरात
1: अरे कसला थर थरात हो डॉग आणि उडी उठाना डॉग
2: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं।

अरे टकले की खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे, लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना, लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्या समझे? नहीं समझे, चल फोन।

हंगामा जय हंगामा, कहाँ गई मेरी धंगम्मा, टकले से घाबर गई क्या, आ दिखाता हूँ तुझे हंगामा।

0: अंधेरे में नींद नहीं आती तो तू तुम्हें रोशनी किए देती हूँ।
1: अंधेरा है तो रहने दो, मुझसिम चांदनी हो तुम। अंधेरा है तो रहने दो, मुझसिम

0: नमस्कार। हाँ हाँ हाँ भैया, चलो चलो चलो चलो चलो।
1: माई सिंपथीज, मुझे आप दोनों से पूरी हमदर्दी है। क्या बताऊं, दोष में तो है। दिलीप कुमार, लेकर आइए।
2: माफ कीजिएगा, मेरा नाम दिलीप कुमार नहीं है, मेरा नाम तो दिलीप खन्ना है, है ना?
1: कोई बात नहीं। मिस्टर दिलीप खन्ना
2: जी,
1: ये जो मेरी सहेली है ना अंजू, यानी कि आपकी होने वाली
2: पत्नी।
1: हाँ।
2: जी
1: पागल
2: जी,
1: पागल बिल्कुल पागल। 5 साल से मेरी ट्रेनिंग में है, फिर भी इसका दिमाग दुरुस्त नहीं।
2: साफ साफ बताइए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
1: 5 साल से मैं सिर्फ एक ही मंत्र इसके कानों में फूंकती जा रही हूँ, शादी मत कर, शादी मत कर, शादी मत कर। लेकिन